0: शिक्षकहरु को ड्रेस स्कूल कलेज का विद्यार्थी को ड्रेस पाइन का साथ ही अर्डर बमोजिम तैयार पार् परेमा मनोकामना टेलर्स समझना
1: प्रोपाइटर उमेश थापा थप जानकारी का संपर्क 9844065293 और 9844121119।

0: 나오라 사키오 불안 에 코이 샤마네 나오라 사키오
1: 아이나 파니게 아마 파니게 아마 파니
2: 파니네 파니네 파니에 타네 파니 나오라 사키오 우티오 타케타
1: 나오라 파니 파니 파니 파니
0: 파니
3: लापरवाही नगरौं प्रज्वलनशील पदार्थमा सबैले दिउँ ध्यान
1: एक काटी सलाईले लिन सक्छ ज्यान
2: सलाई तथा लाइटरहरू बाल बच्चाहरूले देख्ने तथा भेट्ने ठाउँमा नराखौं
1: धुम्रपान गरी जथाभावी सुरतको ठुटाहरू नफ्याकौं
3: घर वरिपरि झिक्रा पात पतिङ्गर नथुपारौं
4: होरी बतासको मौसम अनि आगलागी हुने बढी सम्भावना बेलैमा सबैले होस पुर्याउं अकल्पनीय घटनाबाट आफू पनि जोगियौं र अरूलाई पनि जोगाऊ
5: जनहितको लागि हाम्रो रेडियोको प्रयास
6: समाचार विचार विश्लेषण मनोरञ्जन साहित्य र कला संस्कृति पर्यटन र विकासका लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज

शास्त्र मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जन पक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: அப்பே என்ன பாடு சொல்லி வாஸ்கு டிவி போக்குற இடியோ நீக்க அவத்தார
1: கட்டை பரிலை கொஸ்கு டிவி போக்னு பெட்டி ஆப்னே டிவி பிக்ரியோ அனி பனவுன ஜன லாகி கொண்டி பனவுனி புக்கா உலாட்ட ஓயினா
0: त्यति कुरामा पनि चिन्ता गर्नुपर्छ त सदरमुकाम चरीकोटबाट चरी घ्याङ जाने बाटोमा रहेको हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा लैजाऊ न त्यहाँ त तिम्रो बिग्रेको टिभी मात्र होइन कि मोबाइल घडी सबै पनि हाल्छ नि सकिगो नि।